0: एक्सपर्ट?
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट समिट रियल्टी एक्सपर्ट्स।

क्या बात है। अच्छा मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कल जो मैं चार नाम अनाउंस किए थे ना, तो मैं प्लीज वो इनबॉक्स कर देना, दो नाम मेरे को आ गया, ताकि थोड़ा मोमो खवा दिए भी कल के जो खूबसूरत गल्लां बातें की, मुल भी मोड़ना जरूरी है ना, मैनू मैसेज नहीं आए।

0: अच्छा पंजाब ताजा ताजा कौन जाके आया?
1: 905-673-3337 905-673-3337
0: अभिषेक जी थोड़ी कॉल आ रही थी, माफ करना प्लीज दोबारा कॉल कर लो, मैं थोड़ा जा बिजी सीगा ते प्लीज कॉल ना हो। सो आप हूँ गल्लां बातां भी करांगे थोड़े फरमाइशी गीत संगीत और फिर हूँ 10 बजे तक इदा ही रौनक लाउणी आपां रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते उस तो बाद 9 to 10 रेडियो प्रोग्राम उड़ान लैके हाजिर होवांगे। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू मिट्टी दे विचों हीरे लभन की गल आ कि जिसनों जो चंगा लगता जिस जिस जिसकी जिदा की नीयत होंगी है ना वो देखो कई पंजाब नू कहिंदे कि नहीं यार पंजाब हुण वो गल्लां नहीं रह गईयां, कई कहिंदे कि नहीं यार इत्थे भी तो उही चीज़ां आ। सो मैनू लगता कि मिट्टी सारी कर्मा वालियां ने थावां धरतियां सब उही हुंदियां ने। मैनू लगता कि बड़ा खूब किसी ने कहा कि जिसदी नीयत उही ओह कहानी रखदा, जिसकी जैसी नीयत उही ओह कहानी रखदा, कोई परिंदियां लई बंदूक ते कोई पानी रखदा।

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को मानते हुए जुड़ चुके हैं एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान, जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान, प्रभ संत दे नाल।

33333 और 6430 एरन मिल पार्कवे। फोन नंबर मिसी सागा का नंबर है 905-542-1333। लंडन, हैलीफैक्स और विंडसर दे विच भी ब्रांच है। शुद्ध

0: आपने,
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वक्त देने के लिए। सदा खुश रहिए, कभी कुछ काम रहा दर्शन भाई प्लीज कॉल करिए, इसमें कोई गैरियत नहीं है। मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, ऑफ द एयर भी आपको पहले दिन भी ये मुलाकात हुई तो बोला था। आप बोल के देखिए फिर देखिए क्या करता हूँ।
0: श्योर सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच,
1: लव यू मेरी जान, खुदा हाफिज़।
0: थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, तुसीं भी कोई गलबात कर सकते हो 647-367-5353 ते लाओ। फिर आपां थोड़ा जिहा तड़का शड़का लाउणे, एक बड़े प्यारे जे गीत दा, माणक साहब नूं तुहाडे सामने पेश करदे आं, बहुत प्यारे जे गीत दे।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7063 ते 416-917-7763।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: समा देने लई शुक्रिया जी, तुहानूं ते साडे रेडियो नाल जुड़े सारे लिसनर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते ते आदाब। मॉर्गेज रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी अपने लिसनर दी कॉल कर सकदे ने मैनूं रशमीत कौर नूं 6475394499 जां गूगल कर सकदे ने रशमीत कौर मॉर्गेज ब्रोकर। गलबात करांगे जी अस सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट बारे। सिक्योर्ड मतलब जड़ी की तुहाडे घर दे अगेंस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट बन सकती है। वधिया प्रोडक्ट है स्पेशली उन्हां क्लाइंट्स वास्ते जेडे की अपनी एग्जिस्टिंग बैंक दी मॉर्गेज नूं तोड़ना नहीं चाहते किसी भी रीजन करके, कि वधिया रेट मिलिया होया जां फिक्स रेट ते हैगी है जिन्हों तोड़न ते पेनल्टीज पै रही ने, बट एट द सेम टाइम घर विच इनफ एक्विटी बन चुकी है जिन्हों असी यूज करके फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, जां अपनी डेट कंसोलीडेशन हैगी है, जां वैसे ही बना के रखना चाहते हैं कि किसी भी समय सानू लाइन ऑफ क्रेडिट की लोड़ पै सकती हैगी है। हमेशा एम्फसाइज करती हैं हर क्लाइंट की सिचुएशन जिहड़ी है वक्री हुंदी है। ऑलवेज कॉल करो ये वेखण वास्ते कि तुहाडे वास्ते की ऑप्शंस अवेलेबल ने। ते जिद्दां असीं अकाल मॉर्गेजेस ते हमेशा कहने आ, जे असीं एक वारी तुहाडी फाइल रिव्यू करके हां कहती ते असीं हमेशा अपने वादे ते पूरा उतरांगे। बहुत ही जानकारी लई कॉल कर सकदे हो मैनूं रशमीत कौर नूं फ्रॉम अकाल मॉर्गेजेस 6475394499 647-549-4499। धन्यवाद।

सतगुर होई दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होई दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होई दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर, खूबसूरत चढ़ती कला रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: जिंदगी हैरानियां नाल भरी हुई है पर तुहाडे परिवारां दा फ्यूचर उन्हां विचों एक नहीं होना चाहिदा प्लैनेट इंश्योरेंस तो कित्ती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसी अपनी लाइफ दी सारीयां इंपोर्टेंट चीजां नूं प्रोटेक्ट कर सकदे हो ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल वी ने ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे आं तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड ते तुसी कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535
4: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
5: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number

0: Savings Week. क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो। ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने। ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है। कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
1: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
2: 32, 55, 80, 98, 81
3: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ, काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828.
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने करना हो ट्रैवल।
1: सर्विंग कनाडा नेशन वाइड
0: 9056718400 और 9057968800 और विजिट giltravels.ca।
2: देखो जी, एक तो मच्छी होंदी है जिहड़ी पानी च रहिंदी है, तो दूसरी मच्छी होंदी है जिन्हूं वेख के मुंह च पानी आ जांदा है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिल दियो, आज ही चक लो।
0: कॉर्नर ऑफ मैकलॉकलन एंड रे लॉसन, कॉल 9054502800 नाउ ओपन टिल 2 AM।
3: मैनू समझना तेरे बस दी गल नहीं, अपनी सोच नू बुलंद कर या फिर सोचना ही बंद कर दे।
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom 2.5 वाशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222।
5: और सेठी साहब, भाई केड़िया सोचा च डुबे हुए हो?
6: ओ जी की दसा, मुंडा मगर पिया कहंदा पापा निसान दी गड्डी लैनी है, समझ नहीं आ रहा किधर लग दवा।
5: मैं सुने अजकल एयरपोर्ट निसान दी बल्ले बल्ले हुई पई है।
6: अच्छा, ओ किवें? ओ हैदा जी, जदों निसान दे हरेक मॉडल ते हरेक महीने बेस्ट डील्स मिलदी होण तां बल्ले बल्ले तां आपे ही होणी है। चाहे निसान सेंट्रा होवे, अल्टिमा, मुरानो, पाथफाइंडर या निसान दा कोई भी मॉडल, यू गेट द जॉ ड्रॉपिंग डील्स गारंटीड एवरी मंथ। सो विजिट टुडे एट एयरपोर्ट निसान ब्रैम्पटन 905 7914900।

0: प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीता तो मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सबर होता, सबर ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता रहता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप हूं इसलिए कि जो दिया तूने वो बहुतों को नसीब नहीं होता। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए।
1: अपने नाल संपर्क करने नंबर ने 416-677-0609। ऊपर वाले का दुआ कर मरे, फिर मिलेंगे। डेव टाला इजाजत दो, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट की कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हैं। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 का जनरेटर अते 14x14 feet का पैड भी बनया है। 2 साल की नवी कॉटेज $100,000 की इनकम जनरेट करती है। 12x30 feet का डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
2: 32-55-80
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
7: 416-571-0157। सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। तीन लोकेशन तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
7: विमला विलेज विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा। विमला विलेज विलेज विमला विलेज विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।
8: मित्रां दे जंक्शन ते
9: ओ केड़े जंक्शन ते
10: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
8: रात लगियां वह फलाना रे
10: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
11: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल्स लोकेटेड ने 2883 डेरी रोड ईस्ट उपर एयरपोर्ट एंड डेरी द इंटरसेक्शन उपर। तुसी चीप फ्लाइट टिकट्स दी पाल दे विचों टोरंटो टू दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर दे रूट ऑप्शंस सुनो चाहिए ने, जां तुसी वीजा सर्विसेज दी पाल दे विचों पूरी फैमिली वेकेशन उपर जान दी सोच रहे ने, जित्थे तुहानू ऑल इंक्लूसिव वेकेशन पैकेजेस भी मिलदे ने। पहुंचना वा जी कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल्स एयरपोर्ट एंड डेरी द इंटरसेक्शन उपर। कॉल कर सकदे हो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.

0: तीजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन, वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 905-456-9900।
1: आप पंजाबी आ गए।

0: 32 55 80 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905 450 2828 905 450 2828।

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह की लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स। बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नूं पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 9057948111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन।
4: मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह। ई तुहाडी मॉर्गेज रिन्यू होण वाली है। तुसी प्राइवेट मॉर्गेजस तक हो गए हो ते वध इंटरेस्टेड पे कर रहे हो। ए तुहाडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्ट रेट ते गारंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी तुहाडी बनवा देणगे। $3500 तुहानू कैश वापस भी दिता जाएगा। जां फिर बिजनेस लोन लेना या लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ते प्रभदीप सिंह होरां नू कॉल करो।
5: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
4: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
5: 905-564-6444।

क्या बात है, वीकेंड आ रहा है, मौसम बहुत प्यारा खूबसूरत गर्मा गर्म है, धुप निकली है पूरी। सो एंजॉय करो इस खूबसूरत प्यारे जी वैदर नू, ते थोड़ी जी वैदर दी होर भी इंजॉयमेंट नू वधाउणे यार, कट्ठे गीत संगीत सुनिए, गल्लां बातां करिए, रौनक मेला फुल बटा फुल। 9 बजे तक असीं तुहाडे नाल, 9 बजे तक भंगड़े भी पैणगे, गिद्दे भी पैणगे, गावांगे खूब, ते खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किस दा दिखायो ना, ते दारू पी के गड्डी चलायो ना।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है यार, अमेजिंग। सो प्रोग्राम है पंजाबी रा ते स्टूडियो दा नंबर 9056733337 9056733337 ते गलबात थोड़ी साडी हो रही है ते जरूर एनी टाइम कोई भी गीत संगीत सुनना दस दिया करो। इंस्टाग्राम से बड़े थोड़े मैसेज आते रहते हैं, थैंक यू। कोई भी नंबर चाहिए किसी भी बिजनेस परसन किसी भी साडे स्पॉन्सर्स दे इंस्टाग्राम पेज है साडा पंजाबी लहरा PUNJABILEHRAN इंस्टाग्राम से मैसेज कर दो ते थोड़े लिए कोई भी नंबर चाहिए हाजिर ने। मनजीत साढ़े नाल ने अपलायंस जंक्शन तमरीत वेलकम।
1: थैंक यू सो मच नवी ते प्रोग्राम सुन रहे सारे श्रोतियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीक दी स्पेशल डील्स ने सब तो पहले जिन्हें भी क्लाइंट इस टाइम अपना किचन रेनोवेट कर रहे हैं बिल्ट इन अपलायंसेस दा पूरे दा पूरा कॉम्बो सैट है जिदे विच 36 इंच दा आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला काउंटर डेप्थ बिल्ट इन फ्रिज 36 इंच दा बिल्ट इन कुकटॉप 30 इंच दा बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलेस स्टील दी डिशवाशर $13,000 दी वैल्यू दा पूरे दा पूरा बिल्ट इन अपलायंसेस दा बंडल है जिहड़ा कि सिर्फ $6,999 चे इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जिन्हें भी इन्वेस्टर इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है जिदे विच 36 इंच दा फुल साइज फ्रिज ग्लास टॉप वाला इलेक्ट्रिक स्टोव टॉल टब दी डिशवाशर विद वॉशर ते ड्रायर $5,500 दी वैल्यू दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है जिहड़ा कि सिर्फ $3,199 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। ते लास्ट दे विच नवी सॉकर वर्ल्ड कप आ रहा सो सैमसंग दा एक नवा टीवी आया मिनी एलईडी करके जिदे च सॉकर मोड है उदे विच प्रॉपर सॉकर दे रिलेटेड उन्होंने कंटेंट जिहड़ा पाया जिदे विच तुहानू ग्राउंड दा कलर वगैरा पूरा लगेगा। 65 इंच दा टीवी है जिहड़ा कि $1,300 दी प्राइस तो एक्सक्लूसिव घटा के $899 च सॉकर मोड वाला मिनी एलईडी सैमसंग दा नवा टीवी है 65 इंच दा तुसी लगा सकदे आ। दो लोकेशनां तो असीं सर्व करदे आ ब्रैम्पटन वेस्ट मिसिसागा स्टील्स ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क। नंबर टू कॉल इज
0: 905-450-0054 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 60 million ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। 60 million ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ 60 million ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਰਾਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਾਸ਼ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਇਸਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਭੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਆਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ 2 ਬੈਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਕੋ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਆਪਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸਟੇਟਸ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਐਂਡ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ ਜਿਤਨੀ ਕਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, 30 to 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਸੌਖੇ ਜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਜੋ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੈਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੋਲੈਟਰਲ ਨੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
2: ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਆਪਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਪੇ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਹੈ, 2024 ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਭੀ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ 25,000 ਹੈ, ਵਾਈਫ ਕੀ 30,000 ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਕੇ 3 kids ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਅਪ ਟੂ 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਸੇ ਹਾਫ ਪੈਸਾ $50,000 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, और कहीं भी आप सारे अमाउंट को कैसे भी खर्च कर सकते हैं। और जो लोन भी होता है ना, वो आपने अगर एक साल का कोर्स है तो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है। शुरू में ब्याज दर है 0% 1 से 1.5 साल, उसके बाद ब्याज दर है 2.5% पूरे साल का। हमें कॉल आते हैं, अभी कॉल आए, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो उन्होंने बोला कि हमारी कितनी फंडिंग बनेगी। हमने उन्हें बोला भी आपको नेट ग्रांट आ रही है $14,000, क्योंकि बच्चे नहीं उनके, राइट, 1% पड़ेगा दो में से, फैमिली ऑफ टू में से। तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें से कॉलेज की फीस जाएगी। मैंने कहा नहीं, कॉलेज की फीस माइनस करके बताया मैंने आपको $11,000। तो मतलब लोग अभी समझते हैं कुछ कैच होगा, देयर इज नो कैच इन इट। हाँ, मैंने एक बात जरूर बोली उनको, अगर आप 1 अगस्त के बाद आएंगे फैमिली ऑफ टू में, आपको जो आज 14,000 की नॉन रिफंडेबल ग्रांट जो आपको कॉलेज की फीस माइनस करके आपके खाते में आ रही है, साथ में 17,000 का 0% पे लोन आ रहा है, 1 अगस्त के बाद सारा ही लोन आएगा, ग्रांट वर्ड यूज ही नहीं होगा उनके केस में। तो अभी फायदा है, अभी एनरोल करें, फंडिंग हासिल करें, सोखे चे कोर्सेज करें, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक।
0: नंबर है सरांश दा, तुसी हुणे लिख लो 4372643175 4374315। सरांश, कोर्सेज केड़े केड़े ने ते डॉक्यूमेंट केड़े लगदे आ?
2: हाँ जी, कोर्सेज ज्यादातर क्लाइंट्स चूज ही करते हैं, लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज। अब आप हमारे क्लाइंट ज्यादातर हैं 40-50 साल के, तो हम उनको उन कोर्सेज में नहीं डालते जहां वो बैग पैक लेके, लंच बॉक्स लेके कॉलेज जाएं। कोविड के बाद से फुली ऑनलाइन कोर्सेज मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखे हैं। फुली ऑनलाइन कोर्सेज है मैनेजमेंट के, अकाउंटिंग सीखें आप, 3 घंटे आपने देने मंडे टू फ्राइडे। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सेल्फ स्टडी मॉडल पे हैं, उसमें आपका एफर्ट कम लगता है, बहुत इजी है वो। साथ में अगर आपको HVAC जैसे स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं, प्लम्बिंग वाले, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट, PSW, वो भी है। सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फंडेड है, आपकी जेब से पैकेट पैसे नहीं जा रहे, उल्टा आपकी जेब में लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डालती है, मेरे में नहीं, आपके अकाउंट में। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स।
0: नंबर सरांश दा 4372643175 4374315 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੋ ਕੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਕਮ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਸਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੈਚ ਇਨ ਇਟ। और लाइक इसमें आपका सर्विस कैनेडा नाम का डिपार्टमेंट है, वो डील करता है, CRS से लोग डरते हैं तो वो डील नहीं करता है इसको। और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में फंडिंग 30 से 90 डेज में डालती है, ये नहीं कि आपने आज एनरोल करा कल डाल दी, नो। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को जाते हैं, 30 से 90 डेज में वो असेस करते हैं, आपको एस्टिमेट तो वो भी दे देंगे, फिर फंडिंग रिलीज होती है। तो ये नहीं कि पहले सीबा लोन की तरह नहीं, आज पैसे दी कल मांग लिए, ना, पहले असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स। हमारी फीस काम होने के बाद $199 से $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट इतनी चीजों में, फॉरन एड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर लगा देती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है जी। कॉल करें 4374315 4374315 हुणे कॉल करो 4372643175 4372643175। साडा प्रॉपर ऑफिस हैगा जी 1,000 square feet का, 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे। हम टिम होटन पे नहीं मिलते क्लाइंटों से, हम 7 years से बिजनेस में, हजारों क्लाइंट को ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, आप कल हमारा पंजाबी लहरा का लाइव भी है, आप इनवाइटेड है।
0: वेरी गुड, क्या बात है। सो जरूर सरांश का नंबर नोट कर लो 4372643175। सरांश बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू जी,
0: थैंक यू जी। 2586 हेलो,
3: सचिकल भाजी की हाल है?
0: वधिया, फिर किवें हो?
3: वधिया वधिया भाजी, गाना ही ला लो यार।
0: केड़ा लाइए?
3: मलकीत सिंह दा ला दियो, पटता शकीन मुंडा फुल वर्गा ने तो रख दी शकीनी ला के
0: पटता। अच्छा मलकीत जी दा केड़ा गाना, एक मिनट मैं लभ लवां। पटता
3: किन्नी सोहनी लगे जदों हसे घुरी वट के लंघ जे नीवियां पा के। पटता शकीन मुंडा फुल वर्गा।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ला दने, चक देंगे पट्टे।